गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरै नमः जुगाद गुरै

0: शुद्ध
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खुशा में जयकारे जावे, निहाल जावे, सत श्री अकाल।

0: जन्म मरण कीटे मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरते
1: राम कली महला दी जानंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद।

दिल्ली में शीश गंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

बल छुड़ो बंधन पर यो बछुना होत पावे कहो ना रे अब ओट हार गज जो हो सहारे बल होए दिल धन छुटे सब के छोए पासे नानक सब बिछ तुमरा हाथ नानक सब तुम ही हो सहारा तुम ही ले सब सिख सब तज करे को गाने दे हो सार को गाने दे हो नानक हे पित नाम हो साधु रहे हो गोविंद कहो नानक हे जगन्नाथ किन जपयो मन किन जपयो

0: ऐसे तुम प्रताप ते दिन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम सब गुरा सगल द्वार को छाड़ गए कहो द्वारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंदा स्वार दोहरा राज करेगा खालसा आके रहना कोई फुहार हो सब लेंगे बचे सुन जो है दोहरा
1: उठ के शुभम लिच की कर कोड़ा पासार डंका वाले फतेह कान है कलंक अवतार चतर चक्र बरती चतर चक्र भुगते

जी गुरु गरीब निवाज अंतर जाने सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान के हाजरिया प्रति गुरु संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत मैं अरदास करे पातशाह सतगुरु नाम कृपा करनी रहमत बख्श करनी देव रुकता दे नाम दया करत यात्रा शपनी करनी।

अशोक हरिय भरम हरिय करम हरि अज हरिय भरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरिय भेव हरिय जेव हरिय छेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि धलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि क्षितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अङ् भजस्तु अङ् रटस्तु अङ् तटस्तु अङ् जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछ

काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों अतेज में अतेज जैसे तेज रीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रूपत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। केत गंग वासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित हू में गढ़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे जो अचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अभेखं अजूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बोधदा वृद्धरूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं नावे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अफेखं अजूनि स्वरूपे नमो।

आदंग न व्याधंग गाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न भरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पादे न सत्रे न मित्रे स्वभूते भवे के भवाने अचित्रे नारायं नारंकं नरूपं नरेखं नलोभं नचोभं अभूतं अवेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न फर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सदा सदा सिद्ध बिरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे यजुक्तं गच्छयाद विक्ते अथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साखं परेयं पवित्रं पुनीतं गताखं न जातं न पातं न मित्रं न मत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साकेन न परमं न चर्मं न कर्मं न वाकेन सतरं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो वाद रूपे नमो वाद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औखधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के भ्रष्ट के रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हरदा कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागबानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजं

तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय नाश अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म धर्म नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम साम नहीं वर्ग व्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरांत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पवन हार कई करत कूड मृत को आहार कई करत साग पय पत्र भच्छ नहीं तदव देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या बतरीत कही कई कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखर टंत कई देश देश विद्या बडंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उजरत सोगरम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितर करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजांत नहीं तदप तास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन स्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुअंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अछेद छ्यंग अन काल अपाल दयाल सुअंग जय ठड्यंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग से जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतजोत भुजंग किये देव देव सराद वितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुजंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जम्पह किन्नर जच्छ जुअंग
नर नारण नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजांग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जहे अंडज सेतज जेर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो अमेर आकाश निवास शितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जहे पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय रोग चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत अभूत अछूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जुग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपय सुत सिंधु अधोमुख ताप तपय कई कल्पन लो तब ताप करय नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जब है त्यो या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो भूल

देवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज्ज तेजमानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा।

न तात्मात जात है, न पात चेहन वरण है, अदेघ शेख भेक है, सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विख सदीव करम भरम है। अद्वेख है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख अनुमानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई, न कर्म में न धर्म में न फर्म में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सुख सुपाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गेह है, न जात है, न बात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दोख है, न दाग है, न द्वैक है, न देह है। न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंगरम है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है। न नेह है, न गेह है, न देह को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अभेद है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है। अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न रंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है। न सीत है, न सोज है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है। न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेग है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है। अछेद छेद है, सता गंज गंज गंज है, अभूत अभेग है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है। बेअंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम भिज है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याध है, अगाध रूप देखिए, अधोग है, अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए। न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोह

आदनाथ अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण। जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार, हस्त कीट विखय बसे सब ठौर मैं निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर विखय रम्यो जेह चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मृतक आद नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखात देव तुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद गतेव, सनक औसन के सनंदन पाव ही न सेव। जच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुखचार। सर्व सबत बतार के तर जाप ही जेह जाप, आद देव अगाध दे जन आद मुर्दा ताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीण। जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसनंके अभिखे विराज सूत्र भी वहनाहे। गूढ़ गौड़ न भीड़ भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न बध उर्द न भूमा काश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन, तीर्थ यात्रा न देव पूजा गौर के न अधीन। सर्व सबद पतार के दर जानिए जह ज्योत, शेष नाम सहंस फन नहि नेत पूरन होत। सोत सोत हटे सभय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महागव कड़त गाड़ अनंत, हार हार कहो सभु मेर नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पायो रखे।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम काज लेथले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावी शिव रुद्र ओमुख चार। कोट इंद्र उपेंद्र व्यास न सनत कुमार गाय गाय थपे सके वसुम चक्रत भे मुख चार। आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग चतर काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार। त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है।

योगी रागी कवन कहो तत् मोहि तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ

दुष्ट निकंदन आदवृते जचरा सन्मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे लख मते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन राम कबर।

खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रड लाच भी हंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आदवृते सुर नर प्रतिबारण पतित उदारण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय होसी मखा सुर मर्दन पशु विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत मनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दोख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मखा सुर मर्दन साध व्रदन संदुष्ट हंते कारण करी ली गर्व कही ली जोत जति ली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुकडुकी दमंगे बाग बबंगे भुजा फरंगे शोध गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी मखा सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल वधे सरदार विवरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धनम धुजे धूमराज विध्वंसन सुंडत चुनसन सुंभ न पातन सुंभ मथे जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे त्वा प्रसाद पाधड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम क्यों आप करते पसार जद्दा बभूतन भयानंद तह कहो जथावत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज ते जान भय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रोग शोक ते रहत रूप अन्वय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन भंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह सत्र मित्र दो एक सार अच्छे स्वरूप अवचलकार जानी न जाय जेह रूप रेह कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जेह सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विरहल सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीब बंतन दुरंत जय नेत नेत निषिध नु चरंत पायो न जाय जय पार पार दीनान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवये दीनन की व्रत पाल करे नित संतु बार गनी मन गारे पछ पशु नक नाक नराधिव सर्व समय सबको व्रत पारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के पल मै दल डारे खंड खंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पतमा पत भेद कतेव भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रूख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हमेव न भेव रखियो भ्रम से भरमाए
वेद पुराण गतेव कुरान हसेव तके कर हाथ न आए, पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगाध तथेक्षो भूत भवेख भवान अभान अभय, अंत विहीन अनात्मा अव अदाघ अधोक अछिद्र अक्षय है। लोगन के करता हरता जन्म धल मय भरता प्रवह है, दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है, देह विहीन स्नेह सभूतन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पदमा।

फेट न पावे। और की बात कहा कह तू सौ सो फेट ही के पड़ बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल सातत जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाव को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सभी खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से जदुर आनंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद से दस

आसन गोड करे अष्टांग धरे वह न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के तुलय दुजत के धरय अत्र के धालय के छतरी से मग धर ले चेस लाज के दान के देव जी से मन मान के दया और स्वामी के देव जी मन के के जन जुद के जुद ये अवरुद के मिटई महा बुद्ध के देव जी महान युग महान है ज्ञान के हम के महा बुद्ध दा है दादा दे हो के कदम के महा बुद्ध महा काल हो दे दादा रह काल काल हो दे दादा पूर्व बिन पार पाव हिंगु रहे माल पूर्व बिन गोर पर दे हिंगु न जाए ते धन पूर्व जो विजय को साधा कौन साधन है एक बंद प्यार के साथी यार का थे नाम है हर प्यार के नाम पर आगे फिरंगी माने कंधा रे कुरे जाने पर कंधी पर बदन की पछोरे से जाने पर है मल लक्ष्मी मंदिर रे दे मन सो तन से डरे डरे बैठे दिन मन सो तन मन धरम धरम बैठे नंगी पर चरे नाम बंग के बंगा रे फिर रंग के फिरंगा वाले बंग के रिवा रे तेरी है कम वाला दिन के रो बंग के रोही दम के जेब से के हरे रे बीर बंग से मंदिर ले पा के पुंज को मिले दम से मिले दम को मदद गोखा को नदा वे चीन मचीन के सी सगो में तेरे बेते तेरे चीन के देश के नरते बैठे जे

चंदन से चंपा और चंद्रमा से चंद्र के चांद जैसे चांद का गड़ जो जो ही रहता है रहते दिन रास्ता पर रंग का नाटक किया से चंदन का वास्ता की नंदा की हरि की वो जगह दे सवाल दिया की रहता है की दिया की छवि है और आज के के रंग की मन से मान की प्रदान की तेरे की लगानी ये बंदा के ब्रह्म की कदा रे पर आई का दिया हरि जब हरि पहुंच के वो हरि तेरे नाम से जाइए तो मन हरि तेरे नाम से जाइए पूरब पलाव काम रूप कमाऊ रब पलाव काम रूप कम हो से मैं पर मैं पूरन जाता जब चंद्र मंत्र दे है आप नाम पर की रति दे हरि को न पाई रति हरि को न पाई रति तो प्रसाद

अचल स्वरूप सुंदर सजान सुंदर सजान फुल तंत्र फुल फुल मोर मोर सुर रह जान मन मथा चौर मथा चौर

भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी, तब तापह जपह बेनता। तेरे अनेक पड़ै बहु सिमृत शास्त जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडियावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाव। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा करहै तन नामृतन पाया। गुरमुख लाथा मनमुख गवाया, तद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडै भैले निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़। मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। नाहा जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक देहरिया। गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कतै नकाम, मल साध संगत भज केवल नाम। शरण जाम लाग भौ जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो

चौपई को कह चौपई सम सतरह सहस बणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मैं नागने सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लवलागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाँ गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दऊ चल राख आप मुहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो

आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्रीयस पान कृपा तुम रिकर मैना कहो सब तोहे बखान।